सुख राजे हरी चंद्र घर नार सतारा लोचन रानी साध संगत मिल गाँव दे राती जाए सुने कुर्बानी। राजा हरिचंद बड़ा धर्मात्मा राजा होए, इसकी घरवाली भी बहुत धर्मात्मा सी। वड़ी राती उठ के सतसंगत विच जाके बैठना ते फिर राजे दे उठन तो पहला पहला आके फिर आके सौ जाना। इसे तरह कितना समा सतसंग करती रही, नाम दा रंग चढ़दा रहा, अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा होंदी रही। क्योंकि रंग लागत लागत लागत है, जेहो जी कोई संगत विच बैठदा है हौले हौले ओहो जिहा ही रंग चढ़ जांदा। क्योंकि पंछी जेहो जे ब्रिश ते बैठेगा ओहो जे ही फल प्राप्त होणगे। जे अंब दे ब्रिश ते बैठा है तां अंब ही मिलने हैं। इसे तरह मनुख दा जीवन जे साकत पुरशां विच जा पवे तां पापा दा भागी बन जांदा। जे सत संगत विच जांदा है तां इसते पुन वध जांदे हैं। राजा हरिचंद दी घरवाली रोज सत संगत विच जाके गुरबाणी का कीर्तन सुनना आनंद मानना, क्योंकि ये भी आत्मा की खुराक है। जिस तरह साडे शरीर नू खुराक की लोड़ है, साडी आत्मा नू भी परमेश्वर के नाम की लोड़ है। वो नाम का भोजन छकती है जो साडे अंदर जिदे सदके साडा शरीर चल रहा है ना, उसनू ही भोजन की भुख लगती है। पर वो भोजन नाम का छकती है। उच्चारण करो श्री। तो तारा राणी सतसंगत विच रोज जाना ते राजे दे जागन तो पहला पहला आके फिर सौ जाना। अज अचानक राजे दी जाग उगड़ी तां की तकिया कि राणी नहीं सुती। मन विच शक पैदा हो गया कि किधर जांदी है अद्धी राती उठ के। मन विच सोचिया जितने तक कोई अखी ना वेख लईए उस तरह एवं किसी नूं कलंक लाउणा या कह देना चंगा नहीं है। चंगी तरह छान बीन कर लैनी चाहिए है भी किधर जांदी है। ता राजा अज सुता नहीं पर उवें ही कराड़े मारन लग गया। ते राणी ने समझा भाई हुण आराम विच हो गया है। ते राणी सतसंगत वल तुर पई। मगरे मगरे राजा जा रहा है। राणी जदों सतसंग विच जा पहुंची ते मन नूं त्रयास आया भाई चलो किते माड़े पासे तां नहीं ना जांदा, किते माड़े पासे तां नहीं ना गई। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर की भगती विच ही जुड़ी हुई है। पर राजे ने राणी दी एक खड़ाऊ चुक के घर ले आंदी। भाई पुछांगे भाई तेरी दूजी खड़ा किथे है। राजे ने आके संदूक विच उस खड़ा नूं बंद कर दिता। राणी जदों कीर्तन सुनदिया कीर्तन दी समाप्ति होई ते बाहर निकली तां एक खड़ा दा जोड़ा पिया। बड़ी डरी कि मैं राजे नूं की जवाब देवांगी जदों पुछेगा भाई दूजी खड़ाम किथे है। मैं जवाब की देंगी मुड़ के जाके साध संगत विच जाके बेनती कीती कि साध संगत अरदास करो मेरी दूजी खड़ाऊ मैनू मिल जावे, मेरी पत रह आवे, मेरी इज्जत रह आवे। जे राजे कोल ए पोल जार हो गया तो राजा मेरे ते शक करेगा। उच्चारण करो श्री वाहे। सारी संगत ने जदों

परमेश्वर कहायो। पाठ अपने इस शब्द के धन गुरु नानक साहब का जिक्र करते हैं, लिखते हैं ओ जोत रूप हरी परमेश्वर जिसनू कोई किसे नाम नाल याद करता है, कोई किसे नाम दे नाल ओ हरी जोत रूप परमेश्वर इस दुनिया दे विच गुरु नानक दा नाम लैके प्रगट होए। उस हरी उस जोत रूप परमेश्वर ने अपने आप नू गुरु नानक इस दुनिया विच आके अखवाया। भाई गुरदास जी भी बयान करते ने आप नारायण कलातार जग में भर भरियो। शब्द की शुरुआत पट्टा ने इस तरह की थी, सब तो पहला गुरु नानक

दूसरे गुरु बने गुरु अंगद साहब, पर किस तरह बने? गुरु अंगद साहब जी का पहला नाम है भाई लैणा। ए देवी दे पुजारी सन, हर साल बड़ा भारी जथा लैके देवी के दर्शन करन जाया करते सन। इस वरी भी भाई लैणा अपने साथियों के नाल देवी के दर्शन करन जा रहे ने। रस्ते दे विच करतारपुर शहर आया, जिथे इन्हां सारिया ने आके डेरा किया। भाई लैणा अपने साथियों नूं कहन लगे, मैनूं पता लगा है इस करतारपुर शहर दे विच गुरु नानक साहब रहिंदे ने। बड़ी शोभा वड्याई सुनी है उन्हां दी। भाई मेरा दिल करदा है मैं दर्शन करे आवां, देखा कि गुरु नानक कैसा है। साथी नाल सलाह करके घोड़े ते सवार होए ने। भाई लैणा अपने डेरे तो चल पए उस जगह वाल जिथे गुरु नानक वसदा है। पुछदे जा रहे ने ओ डेरा ओ धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक बैठा है। अजकल आप गुरुद्वारे कहने पहला धर्मशाला क्या करते सन, जिथे बैठ के परमेश्वर की सिफत की जाए। एक परमेश्वर तो सिवा होर कोई गल ना हो, जिथे सेवा ते सिमरन हो, जिथे दर्दमंदा लोड़वंदा की सेवा की जाए, जिथे दुखियां का दुख दूर किया जाए, जिथे धर्म की गल हो, वो धर्मशाला ओ गुरु दा परमेश्वर दा घर। भाई लैणा घोड़े ते सवार ने पुछते जा रहे ने कि धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक वसदा। पुछदिया काफी दूर चले गए। हुण अगों किसे कोल पुछना है, कोई नजर ना आया ता भाई लैणा हैरान हो गए। एक बड़ी ही सोहनी सूरत जिदे चेहरे तो नूर टपकदा है, जिन्हां दे बोल फरकदे ने, सूरत देखे मन नूं ठंड पैंदी। ओ सूरत पता नहीं किधरों चलदी होई भाई लैणे दे सामने आ गए। और जद भाई लैणा उस सूरत नूं देखदे ने अखां चमकण नूं दिल नहीं करदा, अखां कहिंदियां ने कि मैं सूरत देखदा रहां। यह सूरत अखां तों ओले ना होवे, इन अखां दे नाल बड़ा कुछ देखिया पर एहो जी सूरत अज तक देखी नहीं। ते भाई लैणा उस सूरत नूं पुछदे ने ओ धर्मशाला किथे जिथे गुरु नानक वसदा है। मैं गुरु नानक दे दर्शन करने ने। सात संगत ए सूरत होर कोई नहीं, ए आप ही गुरु नानक है जेड़ा इस सिख नूं आप लैण वास्ते आया। गुरु नानक साहब
ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ। ਪਰ ਤਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕੋ, ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਖਾ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਦੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਆਵੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਗਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ

ऐसा गुरु नानक का मिलाप होया, सब कुछ भुल गया, सेवा करन लग पे। जो गुरु ने कहा कदी कहा मोड़िया नहीं। धन गुरु नानक साहब जी दो साहबजादे सन, बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी चंद। दोनों साहबजादे जिन्हां नूं इस गल का माण सी, असीं गुरु नानक दे सपुत्र हां, साढ़े पिता तों बाद यह गुरगद्दी सानू मिलेगी। पर गुरु नानक दे घर निम्रता, सेवा, सिमरन अते हुक्म मनन नूं पहल दित्ती। समा बीतदा रहा, गुरगद्दी देण दा समा आया, तां गुरु नानक साहब ने अपने पुत्रां दी, होर भी सिखां दी, भाई लहणा जी की प्रीख्या ले। एक दिन की गल है, संगतां बड़ियां आईयां करतारपुर दर्शन करन वास्ते। गुरु नानक साहब दे नाल गुरु नानक साहब दे दोनों सपुत्र भाई लहणा अते संगतां नाल इक दरखत है जंड दा। गुरु नानक साहब कहन लगे, श्री चंद इस जंड दे दरखत ते चढ़, टाणियां नूं हिला। टाणियां हिलाएगा मठियाई डिगेगी, बर्फी डिगेगी, ते संगतां नूं ये मठियाई खवावांगे। श्री चंद कहन लगे, पिता जी बावले हो गए, कहो जिया गल्ला कर दे, कदी दरख्तां नाल भी मठियाई लगी? लोकी सानू पागल कहणगे। ये ते जंड दा दरख्त है जिन्नू कोई फल भी नहीं लगता, इनू मठियाई लगे? गुरु नानक साहब ने अपने छोटे सपुत्र जिन्हां दा नाम लक्ष्मीदास, लक्ष्मीदास नूं कहा, बेटा हुण तुसी दरख्त ते चढ़ो, दरख्त हिलाओ, टाणियां हिलाओ तां कि मठियाई डिगे। तां उन्हां वी इही गल कही, पिता जी वड्डा भरा ठीक कहिंदा है, कदी दरख्त दे नाल मठियाई लगी? ये अनहोनिया गल्लां ये किस तरह हो सकदियां? सानू लोग पागल कहणगे। जद उन्हां पुत्रां ने जवाब दिता, हुण गुरु नानक साहब ने भाई लहणे वल देखिया ते मुस्कुरांदिया कहण लगे, लहणा जी तुसी दरख्त ते चढ़ो, टाणियां हिलाओ, दरख्त हिलाओ ताकि मठियाई डिगे। सत बचन कह के भाई लहणा जी

अमर सतगुर खिड़की। गुरु अंगद ने कृपा करके अमरदास गुरु अमरदास बना

कोई सौखी चीज मिल जाए, कोई घालना ना घालनी पवे, इस तरह नहीं। ये तुरती चीज इलाही दात जिन्हों लिखी उसे नो मिलनी।

अमृत छतर गुरु रामे दियो समा बीतिया गुरु नानक तो गुरु अंगद बने गुरु अंगद तो गुरु अमरदास होन गुरु अमरदास को ए गुरुगति

भाई जेठा प्यार दे नाल घर वाले जेठा क्या करते सन। गुरु अमरदास जिन्हां ब्यासा दे किनारे गोइंदवाल शहर वसाया संगतां दे नाल भाई जेठा भी गोइंदवाल साहब आए सेवा करन लग पे। इतनी सेवा की थी, इतनी सेवा के गुरु अमरदास जी ने अपनी सुपुत्री पानी दा व्याह भाई जेठा रामदास जी दे नाल कर दिता। गुरु घर दे सेवक ही रहे, जवाइयां वाली प्रौणियां वाली आकड़ नहीं दसती। समा बीतदा रहा, गुरु अमरदास जी दे दो जवाई सन, एक रामा जी एक गुरु रामदास। गुरुगद्दी देण दा समा आ रहा, पर गुरुगद्दी ए निजी जायदाद नहीं, इलाही दाद है। एक दिन गुरु अमरदास ने रामा जी ते गुरु रामदास दोनों नु बुला के कहा, भाई दो थड़े बनाओ पर बहुत सोहने बनने चाहिए। सारा दिन ला के रामा जी अते गुरु रामदास ने बड़े सुंदर थड़े बनाए। शाम दे वेले गुरु अमरदास आए, थड़े देखे ते कहन लगे थड़े पसंद नहीं आए, ढा के दोबारा बनाओ। थड़े ढा दिए। दूसरे दिन फिर बड़ी मेहनत करके बड़े सुंदर थड़े बनाए। शाम गुरु अमरदास फिर आए, कहन लगे थड़े चंगे नहीं बने, ढा के फिर बनाओ। दूसरे दिन भी थड़े ढा के, तीसरे दिन फिर थड़े बनाए। तीसरे दिन गुरु अमरदास फिर आए ते कहन लगे थड़े अज भी ठीक नहीं बने, इन्हां नूं ढा के फिर बनाओ। तारामा जी खिज के कहन लगे, असां तां थड़े बड़े सुंदर बनाए बड़ी मेहनत दे नाल, पर आप जी नूं पसंद नहीं आंदे। आप जी दी उम्र वडेरी हो गई है, चंगी चीज भी चंगी नहीं लगती। मैं तां इस तों अच्छा होर नहीं बना सकदा, ये कह के चले गए। ते जद गुरु अमरदास भाई जेठा रामदास नूं कहा, रामदास थड़ा तेरा भी ठीक नहीं बनया, ढा के बनाओ। ता रामदास जी हाथ जोड़ के गल विच पल्ला पा के कहन लगे, दाता साड़ी मत बड़ी थोड़ी है, साड़ी समझ बड़ी छोटी है। सच्चे पातशाह हुणे ढा देंदा ये थड़ा, आप जी जिस तरह हुक्म करो उसे तरह फिर थड़ा बनावांगा, क्योंकि सेवक का काम है हुक्म मानना, जिस तरह हुक्म करो सेवा करा। यह है हुक्म मानना, सेवा करनी। हुक्म मनिया, सेवा की, गुरु की खुशी मिली। तो हुण गुरु ने कितनी कृपा की, रामदास नूं उस सिंघासन ते बिठा दिता जिथे आप बैठा करते सन। परिक्रमा की, हुण रामदास दे चरणा ते आप मत्था टेकिया ते रामदास नूं गुरु रामदास बना दिता। सेवा, सिमरन और हुक्म मनन दा ए फल मिलिया कि रामदास गुरु रामदास बन गए, जिन्हां ने अमृतसर साहब शहर वसाया जि
ਜਿੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਿਆ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ।

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुज प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। He has gifted me with the balm of Lord's name, and I have enshrined love for Him within myself. The Preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under His wings and has become my protector.

कोई हो जाए नहीं, जिन्हें प्रभु दा नाम लिया होवे तिना तरिया होवे। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन सतगुरु किड़ियां बख्शियां कर रहे हैं, नाम दी वड्याई कर रहे हैं।

सारे लोग आखन लगे बे ए बच्चा बड़ा ही कर्महीन है। हर कोई नफरत करन लगा। भैन भरा रिश्तेदार सारे ही बोल कबोल बोल दे जी, जदों दा तू जन्म लिया है ते घर विच काटा ही काटा है, तुर नहीं सकदा, हथां ना कुछ कर नहीं सकदा, कोई तेनू किन्ना चिर खवावेगा। रोज बोल कबोल बोल दे ने तू बड़ा ही कर्महीन है। आज इस बच्चे को सुनिया ना गया, हर रोज दिया गल्ला सुन के आज तंग आया, आखन लगा मैं तुहाडा दिता नहीं खांदा। ओ प्रभु परमात्मा जिहड़ा सारी सृष्टि नू चलाउंदा है, मैं वाहिगुरु

बीतिया रात बीती फिर दिन आया उस मालक दी बख्शिश होई आज इस जंगल दे विचों ब्रह्मा दे पुत्र श्री नारद जी लंघ रहे ने अचानक बच्चे वल निगाह पई आखन लगे ओए बच्चिया इना उदास ते नाराज क्यों बैठा प्रभु दा नाम जपया कर प्रभु दा नाम जपण दे नाल सारे दुख ते भुखां दूर हो जांदे ने राम राम जपया कर राम नाम जपण दे नाल संसारी दुख ते भुखां सारियां ही मुक जांदियां ने अनारद जी इनी गल करके तुर गए ने बच्चे ने कन्ना नाल सुनिया ते हिरदे विच बसा लिया सिमरन विच जुड़ गया ते की सोची मिलती है किन्ने ही महीने उस प्रभु दे सिमरन विच बैठा रहा राम राम दी जाग सवासा नाल जुड़ गई किन्ने महीने बैठा रहा आज किन्ने महीनिया बाद इस दियां अखां खुलियां ते देखो नाम दियां बरकतां की तक रहा है इस दे हाथ ते पैर ठीक हो गए हुण ते पिंगला नहीं दे रहा आ जदों इसने कुछ तकिया ना ऐ प्रभु तू किड्डा दयालु है तू किड्डा कृपालु है सुनिया सी तू रहमतां दा मुजस्मा है आज ते तेरियां बख्शिशां आज ते तेरे

एक बार मिलन दी खातर तरले कर रहे हैं। नाम दी महिमा ओ बल बल जिन राम कहे।

एक महापुरुष इस बरसात विच तुरे जा रहे ने ते की देख रहे ने और सामने एक घर दिस रहा है। बरसात तो बचन लई इस दरवाजे दे कोल जाके खलोते ने भी ये घर किसदा है बेसवादा है।

ते गनका नी दरवाजा खोलिया, बाबा जी अंदर लांगा, अंदर लांगा। महापुरुष दरवाजे विच खलोते ने, नस के अंदर गए। सतपुरख आए ने सेवा कर लवा, नस के गई ते दूध का गिलास लेके आई, बाबा जी छक लवो। महापुरुष आखन लगे, बच्ची तेरा काम की है, की किरत कर दी है? बाबा जी मेरा धंधा बहुत माड़ा है, मैं कर्मां दी मारी बेसवा। आखन लगे, बच्ची आ तेरे हत्थां दा दुध असां ने नहीं पीना। इन्नी गलाखी ते गनका दे अखां विचों हंजू आए, क्यों नहीं पीना? तेरा कर्म माड़ा है, जे साड़ी एक गल मनेगी ते तां ये दुध दा गलास मैं पीवांगा। महापुरुष दुनिया नू तारण वास्ते आ गए, बाबा जी तुहाडी हर एक गल मनांगी। महापुरुषां दे कोल एक पिंजरे दे विच तो

इनू राम बोलेंगी ई भी बोलेगा, इनू राम राम सिखाया कर, गल मनेगी। हाथ जोड़ के आखन लगी, बाबा जी इस तोते नू मैं राम राम सिखावा। महापुरुषां ने दुध सकिया, हुण महापुरुषां दे बचन तोते नू हर रोज राम राम सिखाउंदी है, हर रोज किन्ना चिर राम राम करदी है। ते एक दिन इहो जिहां बख्शां होईयां, राम नाम इहो जिहा इहदे सवासां नाल जुड़िया, तोते दा उधार ते होना ही सी, इहदी रसना ते राम सदा वास्ते वस गया। हर वेले राम राम राम ते इतिहास विचों सोझी मिलदी है, एडी वड्डी पापण ते राम नाम दियां बख्शां गई स्वर्गां। राम नाम ने तार दिता, लोक परलोक सवार दिते, स्वर्गां दे दरवाजे इस लई सदा वास्ते खुल गए। ये है प्रभु दे नाम दी महिमा। सतगुरु बाणी विच सोझी दे रहे ने, जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन नामे के स्वामी ते उतरे। किड्डा भी गुनाहगार है तू, किड्डा भी पापी है, किड्डा भी कर्महीन है, प्रभु दा नाम जपेगा, राम नाम जपेगा, वाहेगुरु अल्लाह।

सेवा संभालता दान खालसा जी नूं बख्शा। इन माणियां दे माण, ताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट, धन धन श्री गुरु रामदास।

सैव जी कहन लगे किदे जोगा आखो सतनाम श्री वाहे किदे जोगा है तू कोई मां प्यो जोगा होता है कोई अपने आप जोगा कोई दुनिया जोगा कोई देश कौम जोगा तू किदे जोगा है जेड़े प्यार नाल गुरु साहब ने पूछा बच्चे दे कर्म

प्यार ते होवे पर हंकार नहीं। तुर पिया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहन लगे जोगा सिंह ने दावा ते बड़ा कीता है कि जदू मेरी लोड़ पवे

जोगा सिंह चक्कर कट के आया और वो पहरेदार हाल भी खड़ा। फिर जोगा सिंह मुड़ गया, फिर चक्कर कट के आया पर पहरेदार दे हटदा नहीं। चक्कर कट दे अमृत वेला हो गया, ना ते जोगा सिंह मुड़िया ते ना गुरु साहब जी हटे। हुण जोगा सिंह ने मन विच सोचिया पहरेदार दे हटदा नहीं, मैं क्यों ना चबारे चढ़ा। जोगा सिंह ने हिम्मत की, जद पौड़ियां चढ़न लगा ते हुण गुरु साहब तू बर्दाश्त ना होया, एक दबका मारिया, ओ सिंगा किथे चले हैं, जापदा गुरु दा सिंह है तू, सोना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ विच कड़ा गात्री कृपा तेड़ कशहरा पाए है, ओ जापदा गुरु दा सिंह चलिया वेसवा दे द्वारे, जा भज जा सोटा मारांगा ते, ओ जा जाके बाणी पढ़ बाणी पढ़।

कि सारी रात मैं पहरेदार बन के खड़ा रहे हैं। दुख है ते केवल इस गल का तू मेनु बेसवा दे चुबारे थले खड़ा करवाया। वो जोगा सिया होवे मेरा सिख होवे गुरु नानक का सिख ते जावे वो बेसवा दे द्वारे। वो जोगा सिया ऐसे सिखा दी ते मैं कदी भी कामना नहीं जादे सुने ते जोगा सिया उबा मार के रोवे गुरु दे चरण पकड़ ले कहन लगा महाराज मैं समझिया सी कि मैनु किसे ने नहीं देखिया। ए भी समझदा सां कि तैनू भी पता नहीं लगा पर बादशाह की पता सी तू ही ते बांह पकड़ के बजाण वाला सी। असी हमेशा एहो ही समझदे आ सानू जे दुनिया नहीं देख रही ते गुरु भी नहीं देखता पर बादशाह दुनिया की नजर तू बच सकते हैं पर तेरे तू नहीं। पर गुरु का बिरद है जोगा सिगड़ो फिर

आओ, अगर गुरु ने सानू कुछ दिता है उसनु संभालिए, गवाइए ना आपसे ईर्खा दुखदा, आपसे नफरत छड़ के, छोटिया मोटिया गल्ला छड़ के, मना विच प्यार रखिए और सच जानना जिना हिरदय विच प्यार नहीं, जिना दे मना विच प्यार नहीं, उना दे घरां विच प्यार नहीं, जिना घरां विच प्यार नहीं वो घर नहीं, वो फिर शमशान होते हैं। क्यों? घर चंगे समान नाल, चंगे फर्नीचर नाल, चंगे सख मरमर लगाण नाल घर नहीं बनता, घर बनता प्यार नाल, इतफाक नाल। घर वो है जिथे मापिया का आदर मान है, घर वो है जिथे एक दूसरे की गल मनी जाती है, घर वो है जिथे नाम बाणी का प्रवाह चलता है, घर वो है जिथे एक दूसरे नू जी कह के बुलाया जाता है, घर वो है

सच, सच्ची वाणी और सच्चा इतिहास। शब्द ने पढ़िया ते नाल कथा तू पता भी लग गया कि किवें

नमस्कार है जो अंतर नाम सर्व मैं पेख है भगवान निम्ख निम्ख ठाकुर नमस्कार है नानक ओ अपरस सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर तरिया रूप न बेखे नेत्र साध की तैल संत संग हेत करन न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद विख्या पर हरे मन की वासना मन ते टरे इंद्री जित पंच दोखते रहत नानक कोट मदे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए पिन कर्म करत होवे न कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म कहू फल की इच्छा नहीं बाछे केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरे नाम जपावे नानक ओ वैष्णो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनसे सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नितनीत मन तन अर्पय बिस्न प्रीत हर के चन हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन प्रबोध है राम नाम आत्म में सोध है राम नाम सादस पीवे उस पंडित कह उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जोन नावे वेद पुराण सिमरत बूझे मूल सूक्ष्म में जाने अस्थूल चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उतारे पस प्रेत मुग्ध पाथर को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम काहू जुगत कित न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म जिसके मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगे परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरक तैसा उस सोग सदा आनंद तै नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी भिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरदा ऐसा ही जुगत नानक ओ पुरख कहिए जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग प्रभ पावे सोई फुन होग पसरो आप अनंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा

भाई साहब भाई गुरदास जी इस वार दे विच गुरमत दे छे नियम दस रहे हैं कि गुरमत की है, गुरसिख कौन

निम्रता धारण करने। गरीबी तो भाव किसे कंगाली या भुखमरी दा नहीं लेना। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नू गरीबी आख्या गया। सेवा सिमरन परपकार करदियां होया भी मन विच हंकार ना आवे, मन विच किसे गल दा गर्व ना आवे, ए है निम्रता। भाई साहब कहिंदे हन पहला नियम गुरमत दा है निम्रता धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना। एका नारी जति है पर नारी ती भैण वखाणे, वेख पराइयां चंगियां मावां भैणां तियां जाने। ऐसा गुरसिख दा पवित्र जीवन है जो भाई साहब दस

घर पर छा आप बख्शिश कर रहे हैं भाई। जदों तो असी अपनी शुद्ध बुद्ध संभाली ते गुरुदेव पिता जी ने एक साडे कोलो वचन ले लिया। ओ केड़ा वचन सी? आप इस तरह बख्शिश कर रहे हैं।

धारण करनी। दूसरा नियम अपने जीवन नु पवित्र रखना। तीसरा नियम पराई वस्तु पई है उसनु हाथ तक नहीं लाउना, किसे दी इमानत विच ख्यानत नहीं करनी। चौथा नियम ना किसे दी निंदा करनी है ना सुननी है। पंजवा नियम जो गुरु कहिंदा है उस दे कहे होए बचना ते चल के अपने जीवन नु रोशन करना, अपने जीवन नु टालना। हुन छेवा नियम पाई साहब दसदियां, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे, क्योंकि गुरु नानक दे दर दा ए उपदेश है। किसे ने घर बार नहीं त्यागना, संसार नहीं त्यागना, ग्रस्त दा त्याग नहीं करना। हजूर कहिंदे ने अमृत वेले नींद दा त्याग कर दे। अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु, ऐसे विच ही तेरा लोक सुखी ते परलोक सुहेला होवेगा। भाई साहब गुरदास जी कहिंदे हन के जिन्हां विच ए छियां छे नियम कटदे हन उस गुरमुख नूं सहज अवस्था प्राप्त हो गई। सहज अवस्था की है? तुरदियां फिरदियां बैठदियां कारोबार करदियां मन करके ईश्वर दे चरणां विच वसना। आठ पहर प्रभु बसे हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे। ओ मनुख सदा अकाल पुरख दी हजूरी विच वस रहा है जिदे अंदर ए छे नियम वस रहे हैं। छेवां नियम भाई साहब दसदे हन, थोड़ा समय थोड़ा ही खावे।